0: अजित कडकडे यांच्या स्वरातली ही रचना होती. मंडळी, बघता बघता आपल्या कार्यक्रमाची वेळ संपत सुद्धा आली. आपल्यापैकी अनेक श्रोत्यांनी या कार्यक्रमामध्ये सहभाग घेतला. फोनच्या माध्यमातूनही आज बरेच श्रोते सहभागी झाले. सुहास पांडे, अविनाश दिवेकर, गौतम भिंगारडे, निशा लोहार, सुप्रिया राईतकर, अनंत महाजननी आणि हरिश्चंद्र पाटील यांनी फोन केलेले होते. आणि त्याचबरोबर आपल्याला विजय देवरे यांनी एक माहिती पाठवली आहे की कबीरवाड हे नर्मदा नदीवरचं एक मोठं आणि ऐतिहासिक वडाचं झाड आहे, 3 किलोमीटर क्षेत्रात पसरलेलं. खूप सुंदर माहिती आपल्यापर्यंत आली, पण आता मात्र वेळ झाली इथेच थांबण्याची. यानंतर थोड्याच वेळामध्ये आपण ऐकणार आहोत बातमीपत्र, दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होणारं, आणि त्यानंतर आपण पुन्हा भेटणार आहोत रेनबो फंडेमध्ये. त्यामुळे वंदन कार्यक्रमात इथेच तुमचा निरोप घेते. ऐकत रहा 107.1 MHz FM रेनबोचे कार्यक्रम.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे. ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे. इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे. ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है. पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे. कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे. प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे. प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया. योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है. श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है.
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके. और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ.
1: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे. ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट

का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17-19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में 4th स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
2: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
5: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
4: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दास गुप्त के साथ काशफिन नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
4: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं था चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
2: We have been able to achieve that in the first.
3: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
2: They are all designed in India now.
1: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
1: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में SEBI ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों के सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाह का, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
0: धन्यवाद फरहत। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से PM किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने

8:40 का वक्त और ये आवाज़ आप सवेरे के वक्त बहुत कम सुनते हैं। हम हैं आदित्य आपके साथ और आप ट्यून कर चुके हैं 107.1 FM रेनबो मुंबई। और जी, तो आज क्या है खास उसके बारे में बात होगी, लेकिन सबसे पहले हम आपको जोड़ते हैं एक खूबसूरत से गाने से और आपसे एक गुजारिश करते हैं कि आप सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो मुंबई। और ये खूबसूरत सा गाना

0: रेवा डायमंड्स फ्रॉम द हाउस ऑफ पीएनजी एंड सन्स प्रस्तुत कर रहे हैं खास मॉनसून ऑफर।
1: असली डायमंड की असली चमक, आधुनिक डिजाइन और मेकिंग चार्जेस पर 100% तक की छूट।
0: आज ही विजिट कीजिए पीएन गाडगिल शोरूम, रचना संसद, प्रभा देवी, सृष्टि प्राइम, गोखले रोड, ठाणे, फड़के रोड, डोंबिवली और बदलापुर।
1: रेवा नेचुरल डायमंड ज्वेलरी, शाइन नेचुरली।

8:46 का वक्त और ये वक्त है मस्त मुंबई का और हम हेलो कहने आ चुके हैं आपको और आपकी मॉर्निंग को और ज्यादा मस्त बनाने हम हैं आपके साथ, आपके दिल की आवाज आदित्य आपके साथ। और बात आज एक सितारे के शनिवार के रोज हम किसी ऐसे शख्सियत की बात करते हैं जो आपको इंस्पायर करे, जिसकी जीवन गाथा आपको नई ऊर्जा प्रदान करे और उससे तमाम सारी चीजें आप सीख सकते हैं। तो आज अदब की दुनिया के एक बादशाह का जिक्र, बहुत बड़े और जाने माने शायर की बात होगी। उनकी बात कुछ यूं शुरू होती है, फरमाते हैं कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। तबीयत अपनी जब घबराती है सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। ये वो शायर है जो अपनी शायरी में मुख्तलिफ नफ्सियात यानी अलग सेंसिबिलिटी के लिए जाना जाता है। ये वाहिद ऐसा शायर है जो माशूक के कदमों में खुद को समर्पित तो करता है पर जिंदगी की अहमियत को नहीं भुलाता। तभी ये शायर अर्ज भी करता है कि तबीयत अपनी जब घबराती है सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। शायर की शख्सियत के रंग देखिए, संस्कृत का विद्वान, फारसी का ज्ञान, अंग्रेजी का प्रोफेसर और उर्दू का शायर, नाम रघुपति सहाय और तखल्लुस फिराक का, उन्हें हम जानते हैं फिराक गोरखपुरी साहब के नाम से।

मस्त मुंबई में लतफंदोज हो रहे हैं आप अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ। और आज बात फराग साहब की। तो फराग साहब के बारे में कई खूबियां आपने जानी कि अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे, उर्दू के शायर रहे और तमाम दूसरी भाषाओं का उन्हें अच्छा ज्ञान रहा। शायर और कवि और लेखकों से अक्सर एक सवाल किया जाता है कि अच्छा शायर हो पर करते क्या हो, क्योंकि विडंबना यह है कि लिखने वाले लोग इससे रोटी नहीं ला सकते, पैसा नहीं कमा सकते और दूसरे किसी काम के वो होते नहीं, ऐसी सोच है। लेकिन फराग साहब ने इस मिथ को अपने कलम से और अपनी अक्ल से खारिज किया, निरस्त किया। जैसे आज के समय आईएएस होती है, वैसे उस समय की सबसे कठिनतम परीक्षा आईसीएस उत्तीर्ण की, पर दिल में खलबली थी स्वराज के लिए, इसलिए 1920 में उस नौकरी को ठुकरा दिया और स्वराज आंदोलन में शामिल हो गए और उसी सिलसिले में कई बार जेल भी जाना हुआ।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

सुराज आंदोलन में शामिल हुए फिराक और फिर उसके बाद जेल भी गए और फिर वहां से निकले तो फिर इन्हें आवाज दी उस शहर ने जिसे अदीबों का मरकज कहा जाता है, यानी साहित्यिक लोगों का केंद्र, इलाहाबाद। फिर फिराक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर हो गए और इस शहर ने इन्हें वो अलग रंग बख्शा और वो अलग रंग इनकी शख्सियत में भरे जो इनकी शख्सियत में, इनकी शायरी में आगे भी नुमाया होते रहे। जैसे किस्सा गोई करना इनकी शख्सियत में वहीं से आया और फिर इसी तरह किस्सा गोई शैली के अंदाज के शेर भी कहे कि रात है, नींद है, कहानी भी, हाय क्या चीज है जवानी भी।

0: रीवा डायमंड्स फ्रॉम द हाउस ऑफ पीएनजी एंड सन्स प्रस्तुत कर रहे हैं खास मॉनसून ऑफर।
1: असली डायमंड की असली चमक, आधुनिक डिजाइन और मेकिंग चार्जेस पर 100% तक की छूट।
0: आज ही विजिट कीजिए पीएन गाडगिल शोरूम, रचना संसद, प्रभा देवी, सृष्टि प्राइम, गोखले रोड, ठाणे, फड़के रोड, डोंबिवली और बदलापुर।
1: रेवा नेचुरल डायमंड ज्वेलरी, शाइन नेचुरली।

मस्त मुंबई में हेलो कहने आए हैं हम, यानी आपके दिल की आवाज आदित्य आपके साथ। और आज सितारे की बात में हो रही है, एक ऐसे सितारे की बात जिसने उर्दू शायरी और हिंदी शायरी को बहुत वृहद किया, बहुत ही उसका विस्तार किया और एक नई तरीके की शायरी से परिचित कराया। बात फराग गोरखपुरी साहब की। तो एक वाकया यूं है कि उपन्यास सम्राट और प्रेमचंद साहब, जिनको आप जानते ही हैं तमाम सारी कहानियों के लिए और तमाम सारे उपन्यासों के लिए, यही वो शख्स हैं जिन्होंने फराग साहब से कहा कि देखो लिखते अच्छा हो आप और अब उसकी किताब छपवाओ। तब प्रेमचंद साहब ही वो शख्स रहे जो फराग को बतौर शायर इंट्रोड्यूस करने ले गए तमाम सारे पब्लिशर्स के पास, उनका शेरी मजमुआ छपवाने के लिए, उनकी किताब छपवाने के लिए। फिर प्रेमचंद की फिराक से मोहब्बत की नज़ीर तो आपने इसमें देख ही ली। और एक बात ये भी है कि फिराक प्रेमचंद पर भी जान लुटाते थे। दोनों की दोस्ती एक अलग किस्म की दोस्ती थी, एक अलग मेयार की दोस्ती थी। जब प्रेमचंद की डेथ हुई और वो वफात फरमा गए, तब फराग साहब ने टूटे दिल से एक लेख लिखा, तो उसका उन्वान रहा साकिब लखनवी का ये शेर। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, यहां पर हम ही को उन्होंने तुम्ही किया। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, तुम ही सो गए दास्ता कहते कहते।

नमस्कार। 27 मिनट का वक्त और आप लुत्फन दोज हो रहे हैं अपने दिल की आवाज़ आदित्य के साथ। ट्यून किया हुआ है आपने 107.1 एफएम रेनबो मुंबई और बहुत सारे लोग हम तक जुड़ रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं भी साझा कर रहे हैं। और ऐसा ही एक मैसेज हमारे पास विजेंद्र गठोल जी का आया और आपने फरमाया कि कौन कौन जुड़े हैं प्लीज़ बताइए आदित्य जी। तो विजेंद्र जी, हम आपको बताते हैं कि एक तो आप भी जुड़े हैं और कुछ नाम हमारे इस फहरिस्त में हैं। पंकज मोहत साहब, दीपाली श्रोतकर जी और शुभदा जी, फिरोज जी, श्रीधर जी और वैदेही जी, रजनीकांत जी, दत्तात्रेय साहब, प्रणव जी, राकेश माथुर जी, महेश बोहरा साहब, महेश भाटकर जी, प्रमोद जी, प्रदीप जी, आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं और लुत्फ ले रहे हैं और बाकायदा हमें बता भी रहे हैं इस प्रोग्राम के बारे में और प्रोग्राम से जुड़ी बातें भी आप सुन रहे हैं और कोट कर रहे हैं। फिलहाल तो इस प्रोग्राम के मूड को थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज अता करते हैं या देते हैं और सुनते हैं खूबसूरत सा गाना एक नई आवाज़ में।

9:32 का वक्त और मस्त मुंबई में आप हमारे साथ मॉर्निंग को मस्त बना रहे हैं अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ। और आज बात हो रही है एक ऐसी शख्सियत की जो हमारी जिंदगी में तमाम सारे ऐसे एहसासात की तर्जुमानी करता है जो एहसासात आमतौर से बयां नहीं हो सकते, उन्हें अल्फाज में ढालता है, उन्हें शायरी में ढालता है, उन्हें अशार में ढालता है। बात फिराक गोरखपुरी साहब की। तो हर शायर में कुछ खूबी और कुछ खामी जरूर होती है, शायरी नहीं हर इंसान पर भी ये बात लागू होती है। तो फिराक की बात होती है तो उनमें भी हजारों खूबियां थी, कई कई भाषाओं का उन्हें ज्ञान था, कई भाषाओं का साहित्य उन्होंने पढ़ रखा था और कई बड़ी बड़ी जगहों पर उनके लेख छपते थे। इन सब खूबियों के बावजूद एक खामी थी जिसको फिराक खुद भी बताते हैं। वो खामी थी कि वो अपनी अना के मरीज थे। फिराक इंतहाई एगोस्टिक किस्म के इंसान थे। फिराक को अपने ज्ञान का ज्ञान था और साथ ही अभिमान भी। और इसी पर एक शेर भी उन्होंने लिखा कि आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरों। जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा है।

फिराक की ये बात जो शायरी और अदब को समझने वाले हैं वो इस बात से बेहतर रिलेट कर पाएंगे, और जाननी तो वैसे सबको ही चाहिए कि शायरी की समझ रखने वाले जो लोग हैं वो जानते ही होंगे कि फिराक का नाम मीर और गालिब के बाद हिंदुस्तान के तीसरे सबसे बड़े शायर के तौर पर लिया जाता है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, और वो खुद भी किसे सबसे बड़ा शायर मानते थे ये बात जानना अहम है। एक जगह वो फरमाते हैं कि मीर ने सब कुछ कह दिया है, मीर तकी मीर जो एक बेहतरीन शायर हुए जिन्हें खुदाए सुखन का दर्जा दिया गया, उन्हें मीर सब उन्हें फिराक सबसे बेहतरीन शायर मानते हैं, और फरमाते भी हैं कि मीर ने सब कुछ कह दिया है, हमें तो बस उनकी जूठन मिली है। और यही मानना था शायरी के पर्याय कहे जाने वाले असदुल्ला खान मिर्ज़ा गालिब का। एक बार जब किसी फ़कीर के मुँह से जब मिर्ज़ा गालिब ने मीर के कुछ अशार सुने, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं, तब गालिब ये शेर सुनकर फरमाते हैं कि रेखते के तुम्हें उस्ताद नहीं हो गालिब, रेखते के तुम्हें उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था।

नमस्कार। 49 मिनट का वक्त और कुछ ही वक्त हमारे दरमियान इस प्रोग्राम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं फराख साहब की। और फराख साहब की शख्सियत की बात करें तो अगर किसी से तुलना करते हुए बात करें तो जॉन एलिया की जो शख्सियत है या उनकी जो शायरी है उस पर कम बात होती है, क्योंकि शायरी उनकी इतनी बेहतरीन है लेकिन शख्सियत उनकी उससे ज़्यादा बेहतरीन है, इसलिए उनकी शायरी पर शायद

इतनी बात नहीं हो पाती। और उसका सबसे बड़ा कारण उनकी पर्सनालिटी, यानी उनकी शख्सियत के रंग जो हैं वो उनकी शायरी के ऊपर निकल जाते हैं। लेकिन जब फिराक की बात होती है तो उनकी शख्सियत और उनकी शायरी दोनों में ही कमाल का आपको अंदाज़े बयां मिलता है। इसलिए फिराक को जब भी हम सुनते हैं और पढ़ते हैं तो ये मज़ा दुबाला हो जाता है। और इसी तरीके से हमको फिराक के कुछ शेर भी लिखकर भेजे हैं प्रणव शिंदे साहब ने। बहुत ही खूबसूरत से शेर हैं, आप इसका लुत्फ ले सकते हैं कि फरमाते हैं कि एक मुद्दत से तेरी याद भी ना आई हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गई। ये फिराक।

अच्छा 56 मिनट का वक्त और फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम से विदा लेने का वक्त, और बहुत जल्द ही आपके पसंदीदा प्रोग्राम में हम आपसे मिलेंगे नमस्ते भारत में। और आज हम फोन इन प्रोग्राम करने वाले हैं, और फोन इन प्रोग्राम होगा उस किताब के बारे में जो आपके तकिए के सिरहाने हमेशा एक जगह बना दी है, और वो किताब आपको एक अलग दुनिया में पहुंचाती है। वो कौन सी किताब हो सकती है, इसके बारे में आप हमें फ़ोन करके बता सकते हैं। तो हमारा फ़ोन कॉल नंबर है 4515-4132 और 4515-4133, ये हमारे दो नंबर्स हैं। और अगर आप कोई दिक्कत महसूस कर रहे हैं या कॉल बिजी जा रही है तो आप हमें मैसेज भी लिख सकते हैं 8657-6610-71। फिलहाल तो हम बेसब्री से आपके कॉल का इंतज़ार करते हैं, और फिराक साहब के इस शेर के साथ ही इस प्रोग्राम से विदा लेते हैं। मोहब्बत करने के बारे में फरमाते हैं, मोहब्बत करते रहिए। वो कहते हैं कि सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुज़ुर्ग, सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुज़ुर्ग, हम लोग भी फ़कीर उसी सिलसिले के हैं।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, प्रातः के 10 बज रहे हैं और आप सुनिए हिंदी मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन की पश्चिम बंगाल यात्रा पर होंगे। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठित होने के बाद ये उनकी पहली यात्रा है। इस यात्रा के दौरान वे हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और स्वदेश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर के इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की स्विट्जरलैंड यात्रा में देर होने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच नए दौर की सीधी वार्ता स्थगित कर दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्यालय में इस बदलाव के लिए लॉजिस्टिक चुनौतियों और अनिश्चित समय सारणी का हवाला दिया गया है। दोहा डायमंड लीग में भारतीय स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में 4th स्थान पर रहे। भाला फेंक में इस धुरंधर ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिससे वो अपने सीजन के पहले इवेंट में 4th स्थान पर रहे। नीरज शीर्ष 3 में जगह नहीं बना पाने के कारण फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसी के साथ ये मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।

नमस्ते भारत में नमस्ते करने आ चुके हैं हम, यानी आपके दिल की आवाज आदित्य आपके साथ। और आज के सेगमेंट में सुनो सुनो आए दिल वालों में आज बात करेंगे किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। आज के दौर में स्क्रीन इतनी प्रमुख हो गई है और किताबों से कुछ रब्ता कट सा गया है, इस पर आप क्या सोचते हैं? आप कैसे याद करते हैं उन किताबों को जो आपकी पसंदीदा किताब है, जो हर रोज आपके सिरहाने तकिए के नीचे अपनी जगह बनाकर रखती है? उनके बारे में हमें बताइए फोन कॉल के जरिए, 4515413233 पर। ये कॉल हम ऑन एयर लेंगे और आपको सब लोग सुन सकेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ और सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो मुंबई और ये खूबसूरत

0: जी, तो हमारे पास फोन कॉल का सिलसिला शुरू हो चुका है और देखते हैं हमारे साथ था फोन लाइन पर कौन है। हेलो।
1: हेलो, पंकज मोड़ बोल रहा है अमरावती से।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसा कि आपने बातचीत सुनी ही होगी कि किताबों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो कौन सी किताब का जिक्र करना चाहते हैं आप?
1: मैं एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर की, सर जी।
0: अच्छा, क्यों ये किताब आपको बेहद खास लगती है और बहुत पसंद है?
1: हाँ, उनकी बायोग्राफी सर जी।
0: अच्छा, ओके जी। आपको हम बता दें कि ये किताब हिंदी में भी उपलब्ध है, अग्नि की उड़ान के नाम से।
1: हाँ
0: जी, तो बहुत खूबसूरत किताब है, सबको पढ़नी चाहिए, खासतौर से युवाओं को, क्योंकि उसमें उनकी पूरी जर्नी, पूरी इंस्पिरेशनल जर्नी की बात है, तमाम सारे संघर्ष जो उनके जिंदगी से बीते, जब वो एक एग्जाम में फेल हो गए, फिर दूसरे एग्जाम में उन्होंने किस तरीके से दोबारा दुगनी मेहनत के साथ
1: पायलट बनने चाहते थे सर जी, वो लेकिन बनने पाए थे सर।
0: हाँ, बिल्कुल, उसमें बहुत छोटे छोटे अनुभव हैं। और ये इसके बारे में एक ऑडियो भी है गुलजार साहब की आवाज़ में, तो वो भी लोगों को सुनना चाहिए और वो भी बहुत प्रेरित करता है। जब हमने पहली बार सुना और ख़ासतौर से जब किताब पढ़ी तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भर गए थे। बहुत सुंदर किताब का जिक्र किया आपने। और पंकज जी, गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: जीवन फिल्म का तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते
0: हैं
1: सुना।
0: ओके, चलिए ठीक है, हम आपका पसंदीदा गाना आप तक पहुंचाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए। और जो दूसरे लोग हमें सुन रहे हैं वो अपनी फरमाइश और अपनी पसंद की किताब की बातें हम तक पहुंचा सकते हैं। और फिलहाल पंकज जी की फरमाइश का ये खूबसूरत गाना। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए।
1: थैंक यू सो मच सर जी।
0: शुक्रिया।

0: रेवा डायमंड्स फ्रॉम द हाउस ऑफ पीएनजी एंड सन्स प्रस्तुत कर रहे हैं खास मॉनसून ऑफर।
1: असली डायमंड की असली चमक, आधुनिक डिजाइन और मेकिंग चार्जेस पर 100% तक की छूट।
0: आज ही विजिट कीजिए पीएन गाडगिल शोरूम, रचना संसद, प्रभा देवी, सृष्टि प्राइम, गोखले रोड, ठाणे, फड़के रोड, डोंबिवली और बदलापुर।
1: रेवा नेचुरल डायमंड ज्वेलरी, शाइन नेचुरली।

बहुत सारी बातें अर्ज कर रहे हैं आप लोग, और कोशिश ये करिए कि अगर आप कॉल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपसे डायरेक्ट बात करने का मौका है आपके पास। हो सकता है कुछ लोगों की कुछ कॉल वेटिंग में मिस हो रही है, तो उसकी परवाह मत कीजिए, आप करते रहिए कॉल, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपकी कॉल पिक हो और आपसे बात हो। अजय साकरे साहब का मैसेज हमारे पास आ गया है, राकेश माथुर साहब का मैसेज आ गया है, और राकेश माथुर जी हमें एक हफीज़ बनारसी साहब का शेर भेजते हैं, वफा नज़र नहीं आती कहीं ज़माने में, वफा का जिक्र किताबों में देख लेते हैं। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज भेजा है। अजय साकरे जी ने जिक्र किया है गमन गोदान और दो बैलों की कहानी, पंच परमेश्वर, प्रेमचंद का जिक्र किया है आपने, और प्रेमचंद की सारी कृतियों का जिक्र किया है और ये आपको बहुत पसंद लगती हैं। खासतौर से आपने नमक का दरोगा का जिक्र अलग से किया है, ईमानदार अफसर की ईमानदारी की मिसाल को बताया गया है, ऐसा आवर्स करते हैं जी। तो आपने बहुत ही अच्छी बात फरमाई, इसी बात पर हम आपको एक गाना सुनवाते हैं, और आपके कॉल्स का हम बेसब्री से इंतज़ार है, आपको कौन सी किताब सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों पसंद है उसके बारे में हम बात करेंगे कॉल पर।

जी 10:15 का वक्त और बहुत ही खूबसूरत हमारी बातचीत चल रही है। अभी हमारे पास पिछला कॉल आया पंकज मोहत साहब का और तमाम तरह की बातें और तमाम तरह के मैसेजेस हमको मिल रहे हैं, जिसमें

0: जी, तो 10:23 का वक्त और हमारे साथ एक लिसनर जुड़ चुके हैं। जी सर, अपना नाम बताइए प्लीज। हेलो जी, हाँ अब प्लीज अब बताइए। हेलो
1: आदित्य सर, नमस्कार।
0: जी नमस्कार सर, नमस्कार।
1: मैं प्रकाश शिंदे बोल रहा हूँ, मानखुर मुंबई से।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश जी आपका,
1: और इस वीकेंड में आपकी खूबसूरत आवाज सुनने को दे रही है सर, बहुत मजा आ रहा है।
0: अरे वाह,
1: क्योंकि
0: बस जी, जी,
1: आपकी आवाज हमेशा ही मतलब शो पर चार चांद लगा देते, बहुत मजा आता है सर।
0: अरे शुक्रिया शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे किताबों पर, तो आपको कौन सी ऐसी किताब है जो बहुत इंस्पायर करती है या जो बिल्कुल दिल के करीब हो आपके, कौन सी वो किताब होगी?
1: सर वैसे तो मैं एक मराठी कल्चर में पढ़ा हुआ, तो मुझे मराठी की किताबें बहुत पसंद है।
0: जी जी, किस किताब का जिक्र करना चाहेंगे आप?
1: इनमें से विष्णु सकाराम खांडेकर जी लिखी यह कादंबरी पर मुझे बहुत पसंद है सर।
0: अच्छा अच्छा,
1: उपन्यास बहुत पसंद है, मैं हमेशा उसको पढ़ते रहता हूँ। और एक बार तो ऐसा हुआ सर, जब मैं किताब पढ़ने के लिए बैठा था
0: जी,
1: पूरी किताब पढ़ने के बाद सर मैं उठा, क्योंकि किताब में आगे क्या हो रहा है ऐसा हमेशा लगता था, तो पढ़ कर अच्छा लगा सर।
0: क्या बात है, क्या विषय वस्तु क्या थी, उसका कंटेंट क्या था, किस जॉनर की किताब थी?
1: कंटेंट सर ये है कि अपनी इच्छा आकांक्षा या अपने जो अंदर जो रहते हैं ना अहंकार, सब मतलब अपने कितने हावी होते हैं।
0: अच्छा,
1: और इससे छुटकारा कैसे पाना है इस किताब में सर, ये उपन्यास में।
0: अच्छा, तो क्या ऐसी सीख आपको मिली और आप दूसरों को देना चाहेंगे?
1: दूसरे को मैं सीख तो सर यही देना चाहूंगा कि अपने पास जो है

0: उसपे जीना सीखो, अपनी आशाओं के ऊपर तो जीना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर हैवी नहीं होना चाहिए।
1: अच्छा, बहुत खूबसूरत बात है बिल्कुल, कि आपकी जो नीड्स हैं आपको उन्हें फुलफिल करना चाहिए किसी भी तरीके से, और उसको हावी ना,
0: हाँ जी, अपनी भावनाओं को काबू करना चाहिए, भावनाओं पर काबू पाना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और कभी कभी अगर वो जो चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है, अगर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए हमें लगता है कि आपको प्रयास करना चाहिए। जो लग्जरीज होती हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी में दूसरों के दिखावे के तौर पर शामिल करना चाहते हैं, उन पर हमें ज़रूर काबू करना चाहिए। तो ये बात बहुत ही खूबसूरत आपने बताई। तो गाना कौन सा सुनना चाहेंगे सर आप?
0: गाना सर, आज की तारीख में बहुत सारी फिल्में रिलीज हो रही है,
1: कोई एक अच्छा गाना जो इस मूड के हिसाब से हो, जैसे गाने आप सुन रहे हैं।
0: सर ये गाना आपके लिए डेडिकेट है सर।
1: जी जी।
0: आज के तारीख में कुर्बानी मूवी रिलीज हो गई थी 20 जून 1980 में।
1: अच्छा, कौन सी?
0: और आज कुर्बानी।
1: कुर्बानी, ओके ठीक है।
0: और आज इस मूवी को रिलीज हो गए 46 साल पूरे हो रहे सर।
1: हाँ,
0: और इस मूवी का गाना है आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए बात बन जाए, क्योंकि आप सभी अर्जुन ने हमारी जिंदगी बना दी है सर।
1: अरे ये तो आपका बड़प्पन है, नवाजिश है, बहुत शुक्रिया। ये बस ये प्रेम एफएम रेनबो के साथ यूं ही बनाए रखिए, और यूं ही अपनी मोहब्बतें अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहिए, और जुड़े रहिए, सुनते रहिए 107.1 एफएम रेनबो। बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए।
0: दिल से शुक्रिया सर, दिल से
1: शुक्रिया। शुक्रिया सर,
0: बाय बाय।

जी कुछ फोन कॉल्स के बाद अब कुछ मैसेजेस का सिलसिला भी हम आगे बढ़ाते हैं। और शुभदा जी का मैसेज हमारे पास आया है और आप फरमाती हैं कि मुझे चार्ली चैपलिन के जीवन पर आधारित सब किताबें पसंद हैं। वो एक जिन्हें जिनके लिए आपने वो एक उम्मीद देती हैं, ऐसा आप लिखना चाहते हैं। और आपने इसी के साथ एक गाने की फरमाइश भी की है, वो भी जिंदगी से जुड़ी हुई। चार्ली चैपलिन की जिंदगी में तमाम सारे संघर्ष रहे और बहुत सारे संघर्षों को उन्होंने पार करके अपनी जिंदगी को एक मिसाल के तौर पर सामने रखा।

0: रेवा डायमंड्स फ्रॉम द हाउस ऑफ पीएनजी एंड सन्स प्रस्तुत कर रहे हैं खास मॉनसून ऑफर।
1: असली डायमंड की असली चमक, आधुनिक डिजाइन और मेकिंग चार्जेस पर 100% तक की छूट।
0: आज ही विजिट कीजिए पीएन गाडगिल शोरूम, रचना संसद, प्रभा देवी, सृष्टि प्राइम, गोखले रोड, ठाणे, फड़के रोड, डोंबिवली और बदलापुर।
1: रेवा नेचुरल डायमंड ज्वेलरी, शाइन नेचुरली।

0: 10:46 का वक्त और कुछ ही वक्त हमारे आपके दरमियान बाकी हैं, और इस वक्त हम नमस्ते भारत में बात कर रहे हैं उन किताबों की जो आपके सिरहाने तकिए के नीचे अपनी जगह बनाती हैं और जो आपको लंबे समय तक याद रह गई हों, ऐसी किताबें जिनका एक ख़ास वाक़या या कोई एक ख़ास बात आपको याद रह गई हो तो वो हमसे शेयर कर सकते हैं फ़ोन कॉल के ज़रिए 4515-4132 और 33, ये हमारा कॉलिंग नंबर है। तो आप हमें किसी भी वक्त यहाँ पर याद कर सकते हैं, और हमारे पास अभी कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं। शायद कुछ लोग मैसेज से अपनी बात कन्वे करना चाहते हैं। वैदेही जी का मैसेज हमारे पास आया है, अर्ज आदित्य, थैंक यू फॉर दिस सरप्राइज मॉर्निंग शो। ओके जी, शुक्रिया। ऐसे सुखद आश्चर्य आपको होते रहें, ऐसी हम भी उम्मीद करते हैं। और दीपाली शिरोदकर जी का मैसेज हमारे पास आ गया है, वेरी नाइस प्रोग्राम, शुक्रिया आपका, गाना बहुत बढ़िया लगा है विजेंद्र जी को। और इसी दरमियान हमारे पास एक फ़ोन कॉल आ गई है तो हम बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, आप ऑन एयर हैं, क्या क्या नाम है आपका?
1: मैं बीना बोल रही हूँ, मलाश से। मैं आपका बहुत,
0: अच्छा, हाँ बीना जी, कैसे हैं आप? जी जी, शुक्रिया शुक्रिया।
1: नाराजगी जरूर है, आप लोग रात को प्रोग्राम गायब कर दिए हो।
0: जी, कोशिश चल रही है, उस पर बात चल रही है। अभी आप कैसी हैं और क्या बात करना चाहती हैं?
1: बस मैंने ऐसी प्रोग्राम, मैंने कहा आपने फोन लगाया था,
0: अच्छा, अच्छा।
1: गाना प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे अच्छे गाने दे रहे हैं।
0: अरे वाह,
1: मेरे को ना थोड़े पुराने गाने ज्यादा पसंद है।
0: हाँ, पुराने नए जैसा मूड होता है उसके अकॉर्डिंग चलता है।
1: जी जी, अच्छे गाने आप दे रहे हैं।
0: अभी आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: मैं तो बोलूंगी आपको एक फूल दो मालिक का एक गाना चला दीजिए मेरे लिए।
0: अच्छा,
1: वो है ना, तुझे सूरज कहो या चंदा, आई लव दैट सॉन्ग।
0: ओके ठीक है,
1: पॉसिबल है।
0: जी जी, मिल गया गाना। मीना जी, इस वक्त हम बात कर रहे थे किताबों पर, तो कौन सी एक ऐसी किताब है जो आपकी जिंदगी में एक खास जगह रखती है, जिसे आप बार बार पढ़ना चाहती हैं और उससे कोई एक ऐसी सीख जो आप हमें बताना चाहें?
1: किताबें तो मैं नॉवेल्स ज्यादा पढ़ती थी।
0: अच्छा,
1: और या फिर भगवान के बारे में।
0: अच्छा अच्छा,
1: जिससे अपने सही रास्ते पे चलते, अपने बच्चों को भी सही रास्ता दिखाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो मेरे को वो नेक किताबें जिसका मॉरल अच्छा सीख देता हो।
0: जी जी,
1: तो कि अपने बच्चों को भी हम सिखाते हैं ना कि सही रास्ते पे चलो, देशभक्त बनो। मेरे को ऐसी किताबें, ऐसे स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद है।
0: जी, बहुत खूबसूरत बात, जो किताबें आपकी ज़िंदगी को एक सही राह देती हों, ऐसी किताबें आप पढ़ना पसंद करती हैं। बहुत शुक्रिया आपका फ़ोन करने के लिए, और जी इस हौसला अफजाई के लिए भी शुक्रिया। आप सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, और हम सुनाते हैं आपको।
1: सुनती भी रही थी।
0: जी जी, शुक्रिया, हम सुनाते हैं आपका गाना। ओके,

0: हेलो। हाँ जी, कौन बोल रही हैं?
1: हाँ, मैं शुभदा बोल रही हूँ। मैं
0: जी, शुभदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। क्या फरमाना चाहती हैं?
1: नहीं नहीं, शायद मेरा गाना सुना है आपने। मैं बहुत सारी किताबें पढ़ चुकी हूँ, पढ़ती हूँ, को पढ़ने का बहुत शौक है।
0: अच्छा, किसी एक किताब का जिक्र करना चाहें या उससे जुड़ी कोई खास बात का जिक्र करना चाहें तो आप प्लीज करें।
1: मैं ज्यादा करके चार्ली चैपलिन का किताबें पढ़ती
0: हूँ। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओह हाँ, आपने अभी मैसेज में जिक्र किया था चार्ली चैपलिन का।
1: हाँ,
0: जी जी।
1: और बाकी भी धार्मिक किताबों भी मैं बहुत पढ़ती हूँ, रामायण, महाभारत।
0: अरे वाह।
1: और ये सब किताबें मैं बहुत पढ़ती हूँ, हिंदी पढ़ती हूँ, मराठी भी पढ़ती हूँ।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है आपने फ़ोन किया और हमें ये बात बताई। जब तमाम सारे लोग हमें ये बताते हैं कि किताब पढ़ते हैं, तो इससे जो दूसरे लोग जो पढ़ने के बारे में सोच रहे होते हैं कि शायद उन्हें किताब पढ़नी चाहिए, उन्हें एक हौसला मिलता है, एक ऊर्जा मिलती है, या उन्हें एक सीख मिलती है कि किताबें पढ़नी चाहिए। बाकी लोग भी पढ़ते हैं और उनके अंदर जो अच्छे बदलाव होते हैं वो किताबें पढ़ने की वजह से ही होते हैं। बिल्कुल, है ना,
1: सारा बदलाव आ जाता है। और अपन दूसरों को भी बोल सकते हैं कि पढ़ के क्या तुम्हारे में बदलाव आ सकता है।
0: जी जी।
1: और तुम बदलाव कर सकते हो।
0: बिल्कुल,
1: बहुत एंजॉय ये होता है किताबें पढ़ के।
0: बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने।
1: हाँ, और आपका शो तो मैं बहुत मिस ही नहीं करती हूँ कभी।
0: अच्छा,
1: और रात का शो चालू करने की कोशिश करिए।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात पहुँचेगी। और बहुत शुक्रिया अभी के लिए आपका फोन करने के लिए। आपका गाना तो हम प्ले

0: कर चुके हैं, तो अब किसी दूसरे लिसनर का गाना हमें लेना होगा। बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए। इसी तरह से एफएम रेनबो के साथ ये मोहब्बत बना के रखे, शुक्रिया।
1: ओके, धन्यवाद
0: जी। जी तो अब चलते हैं अगले मैसेज की तरफ जो हमारे पास आया है देव शंकर जी की तरफ से, और कई सारे नाम और शामिल हैं इसमें, अजय देव और तुषार देव जी, डॉली बेबी, पूजा और राधिका, प्रभा देवी और तामुरिया और पोता मास्टर अल कबीर, कई सारे नाम आपने शामिल किए और एक गाने की फरमाइश हमको भेजी, और इसी गाने के साथ हम फिलहाल के लिए विदा लेंगे, और विदा इसी वादे के साथ लेंगे कि फिर किसी रोज़ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप और 107.1

मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। प्रस्तुत है इस वक्त के समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनः परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। एनटीए ने एक वक्तव्य में कहा कि पुनः परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में संचालित की जाएगी। 22,79,000 से अधिक विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया। अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता के नए दौर की तैयारियों के चलते अमरीकी दूत स्टीव विटकॉफ स्विट्जरलैंड रवाना हो गए हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पश्चिम एशिया में शत्रुता समाप्त करने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच हाल ही में समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद यह बातचीत संभावित परमाणु समझौते पर केंद्रित होने की उम्मीद है। और अंत में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ब्राजील ने हाइटी को 3-0 से हराकर अपनी पहली शानदार जीत दर्ज की। ग्रुप सी के मैच में मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हराया। मोरक्को ने मैच में शुरू से ही बढ़त बनाए रखी। इससे पहले ग्रुप डी के मैच में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह पक्की कर ली। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।

आपके साथ आपके चिर परिचित हम सफर पहचान गए होंगे, है ना। बाद मुद्दत के मुलाकात हो रही है, कहिए कैसे हैं आप।

यह कार्यक्रम ब्रेक फ्री और मैं आरजे अनीता आपके साथ और लेके आई हूँ फूलों की खुशबू। जी आप पूछेंगे कैसे, क्योंकि हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिन्होंने इतिहास रच दिया। और जैसे कि आप जानते हैं ब्रेक फ्री में हम कुछ इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लेके आते हैं, कुछ उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने लीक से हटकर कुछ किया हो। जी हाँ, लंदन के विस्ले इलाके की खूबसूरती में मैग्नोलिया यानी चंपा के फूल का एक प्रकार है। मैग्नोलिया के पेड़ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि इन गुलाबी फूलों में केरलम की झलक भी है। जी हाँ, क्योंकि इन्हें इन पौधों को लगाने वाली कोई और नहीं बल्कि भारत की प्रथम जो है महिला वनस्पति विशेषज्ञ या वैज्ञानिक कहें डॉक्टर जानकी अम्माल थी। तो आज साझा करेंगे आपके साथ इन्हीं के बारे में जानकारी, इनकी उपलब्धियां, इनके संघर्ष, उसी बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन फूलों की बात छिड़ गई है तो क्यों ना उसी की बात को गीतों में भी हम ढाल दें।

0: जी हाँ, ब्रेक फ्री में क्यों ना ये भी हम आपको याद दिला दे कि 21 जून यानी कल देश भर में हजारों स्थानों पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित होंगे और आप भी अपने क्षेत्र में आयोजित योग संगम कार्यक्रम में अवश्य भाग लीजिएगा। और वैसे भी दिन की शुरुआत यदि कुछ मिनट योग और प्राणायाम से की जाए तो पूरा दिन अधिक ऊर्जावान और सकारात्मक बन सकता है। और हम अपने युवा वर्ग के लिए खास यही कहना चाहेंगे कि युवा साथियों, योग आपकी एकाग्रता, कार्यक्षमता और मानसिक मजबूती बढ़ाने का सरल और प्रभावी माध्यम है, तो आप इसे अवश्य अपनाएं। और ब्रेक फ्री में जैसे मैं बात कर रही थी फूलों की और एक ऐसी महिला वैज्ञानिक की जिन्होंने इतिहास रचाया, जैसे कि कहा 1931 में उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की और वो प्रथम महिला थी जिन्हें वनस्पति विज्ञान में पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से मिली। और उनके बारे में बातें तो खैर होंगी ही, लेकिन इस वक्त है एक छोटे से संदेश का वक्त, तो चलिए सुनते हैं संदेश और उसके बाद हम और बातें करेंगे। और फूलों के बातें तो होंगी ही, बागों की सैर भी जरूर कराएंगे।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: रेवा डायमंड्स फ्रॉम द हाउस ऑफ पीएनजी एंड सन्स प्रस्तुत कर रहे हैं खास मॉनसून ऑफर।
4: असली डायमंड की असली चमक, आधुनिक डिजाइन और मेकिंग चार्जेस पर 100% तक की छूट।
3: आज ही विजिट कीजिए पीएन गाडगिल शोरूम, रचना संसद, प्रभा देवी, सृष्टि प्राइम, गोखले रोड, ठाणे, फड़के रोड, डोंबिवली और बदलापुर।
4: रेवा नेचुरल डायमंड ज्वेलरी, शाइन नेचुरली।

जी हाँ, बागों में जो फूल खिलते हैं उसके लिए न जाने कितने जो वनस्पति वैज्ञानिक हैं कोशिश करते हैं। सब कुछ अपने आप से प्राकृतिक तौर पर तो नहीं होता, क्योंकि विज्ञान ने काफ़ी दखल दिया है और तब जाके काफ़ी कुछ विकास हुआ है इस क्षेत्र में। और उसी सिलसिले में बात हो रही थी डॉक्टर जानकी अम्माल की, जिनका जन्म 1897 में केरलम के तेलीचेरी यानी आज की थैलेसेरी में हुआ था। उनके पिता ई के कृष्णन तत्कालीन अंग्रेजी शासित मद्रास प्रेसिडेंसी के एक उच्च न्यायालय के उप न्यायाधीश थे और उनके घर में इसी तरह का माहौल रहता था। और पिता को भी बहुत शौक था फूलों का, बागानों का, और कई सारे विद्वानों के साथ उनका उठना बैठना होता था। तो नन्ही जानकी भी ये सब देखा करती थी और उसके मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और शायद इसीलिए उन्होंने लगभग 60 वर्षों के करियर में पौधों पर गहन अनुसंधान किया और उनके अंदर हर चीज को जानने और समझने का मानो एक जुनून

0: हिस्सा था, हमेशा अपने काम पर केंद्रित रहती थी। और एक राज की बात बताती हूँ, लेकिन उससे पहले ये गीत सुन लेते हैं। राज भी कुछ मीठी सी है,
1: तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है?
2: है?
1: मैंने पूछा, बागों में बाहर है?
2: है।
1: गर्मियों के निहार है?
2: है।
1: तो तुमको मुझसे प्यार है?
2: नहीं।

0: अरे पापा है।
1: तुमको मुझसे प्यार है,
0: है?
2: जी हाँ, बात हो रही थी फूलों की और कई सारी मतलब उपलब्धियाँ जानकी अम्माल के बारे में। और यहाँ पर हमारे दोस्त जो हैं हमें व्हाट्सएप करके कह रहे हैं कि एफएम रेनबो सुनाई नहीं दे रहा है न्यूज़ ऑन एयर ऐप पे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि एक बार उसे अपडेट अवश्य करें, मुमकिन है कि उसमें कोई तकनीकी खराबी हो जिसके कारण आपको ये सुनाई नहीं दे रहा हो। और आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बता दें कि MIFF यानी मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है 16 जून से 20 जून तक रोज़ रात 10 बजे निफ फेस्टिवल की विशेष रेडियो रिपोर्ट प्रसारित की जाती है। तो आप जुड़े रहिएगा FM रेनबो 107.1 MHz के साथ और महसूस कीजिए विश्व सिनेमा का उत्सव केवल आकाशवाणी।

राजधानी मुंबई पर। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि 11:30 बजे होता है हमारा रिले कार्यक्रम, जो दिल्ली केंद्र से रिले होता है स्टम्प्ड, और उसके बाद 11:48 पर मैं फिर आपके साथ जुड़ूंगी। तो 11:30 बजे से उस प्रसारण को आप सुनिएगा। और छोड़ जाती हूँ आपको इस गीत के साथ, और दोबारा ज़रूर मुलाकात करेंगे 11:48 पर।

0: जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम ब्रेक फ्री में। और जैसा कि आप जानते हैं, कल यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो आइए अपने परिवार, मित्रों, सहकर्मियों और आसपास के लोगों को भी इस योग अभियान से जोड़े और भारत को योगमय बनाने में अपना योगदान दे, क्योंकि योग है स्वस्थ जीवन की कुंजी और हर दिन कुछ मिनट योग आपको जीवन भर निरोग बना सकता है। तो बहरहाल वक्त हो चला है एक संदेश का और उसके बाद फिर जारी होगा कार्यक्रम ब्रेक फ्री, जहां पर मैं आपको बताने वाली थी एक मीठा सा राज।
1: रेवा डायमंड्स फ्रॉम द हाउस ऑफ पीएनजी एंड सन्स प्रस्तुत कर रहे हैं खास मॉनसून ऑफर।
2: असली डायमंड की असली चमक, आधुनिक डिजाइन और मेकिंग चार्जेस पर 100% तक की छूट।
1: आज ही विजिट कीजिए पीएन गाडगिल शोरूम, रचना संसद, प्रभा देवी, सृष्टि प्राइम, गोखले रोड, ठाणे, फड़के रोड, डोंबिवली और बदलापुर।
2: रेवा नेचुरल डायमंड ज्वेलरी, शाइन नेचुरली।

जी हाँ, तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे जानकी अम्माल के बारे में, और मैंने कहा था एक मीठा सा राज जुड़ा है उनके साथ। दरअसल हुआ ये कि 1920 के दशक में मीठा, सबसे मीठा गन्ना जो है वो आता था साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिण पूर्व एशिया से, खासकर पापुआ न्यू गिनी और इस तरह के जो देश थे, और हमारा जो गन्ना था वहीं से आयात होता था। तो ऐसे में प्रसिद्ध विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन मालवीय ने सुझाव दिया कि भारत को अपने गन्ने की किस्मों में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए, और इसी आशय से कोयम्बतौर में जो है गन्ना प्रजनन केंद्र की शुरुआत हुई। और इस क्षेत्र में जानकी अम्माल का जो शोध रहा उससे ये साबित हुआ कि उच्च उपज देने वाली जो प्रजातियां या जो किस्म हो सकते हैं वो भारत में ही पैदा किए जा सकते हैं, और उन्होंने इस तरह की कोशिश की कि भारतीय परिस्थितियों में भी अच्छी तरह से ये जो क्रॉस ब्रीड्स उन्होंने उगाए वो उगने लगे। और इसीलिए जब भी आप भारतीय किसानों द्वारा उगाए गए गन्ने से बना बनी चीनी का आप सेवन करें, अपने चाय की चुस्कियों का जब आनंद लें, तो डॉक्टर जानकी अम्माल को अवश्य याद करिएगा, क्योंकि उनके शोध ने ही इसकी मिठास को और बढ़ाया है। बहरहाल, जैसे चंपा से भी जुड़ी उनकी यादें यानी मैग्नोलिया, तो सोचा ये गीत कुछ मिलता जुलता सा, जहां चंपावती की बात हो रही है, चंपा तो नहीं लेकिन चंपावती की।

यह आप कार्यक्रम ब्रेक फ्री समापन की ओर अग्रसर है, क्योंकि बस 2 मिनट से कम वक्त बचा है। तो हम चलते चलते आपको बता दें कि डॉक्टर जानकी अम्माल को 1977 में भारत सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक यानी पद्मश्री से नवाजा। और ये भी बता दें कि वे शोध करती रही, काम करती रही और देश विदेश उनका घूमना चलता रहा। और ये भी है कि वो किस तरह से एक साधक थी और अपनी जो अपना जो शोध था उसके प्रति उनकी कितनी श्रद्धा थी। ठीक, क्योंकि वो कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के जब प्रारंभ में वो गई इंग्लैंड और बम गिरते रहते थे रोज, लेकिन वो टेबल के नीचे छिप जाती थी या फिर बिस्तर के नीचे छिप जाती थी या सो जाती थी, लेकिन अपना जो काम है वो छोड़ती नहीं थी। जैसे ही शांति कायम होती वे फिर लग जाती अपने काम में। तो ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने अपने योगदान से मानो न जाने कितने सारे इजाद किए हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। और मेरी यह छोटी सी कोशिश थी कि जानकी अम्माल यानी डॉक्टर जानकी अम्माल, जो सबसे पहली भारत की वनस्पति विशेषज्ञ यानी महिला वनस्पति विशेषज्ञ थी, तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करूं। उम्मीद करती हूं कि आज की ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। ठीक 12 बजे होंगे समाचार और उसके बाद होगा म्यूजिक कैफे, जहां पर मन के पर्दे खोलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और 107.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। प्रस्तुत है इस वक्त के समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल दिवस के अवसर पर राज्य की जनता को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल

या फिल्म रजनीगंधा का ये गीत और शायद मन की उन उलझनों को टटोलने वाला, खोलने वाला और जानने की कोशिश करने वाला ये खूबसूरत सा गीत मुकेश की आवाज में और जो संगीत था सलिल चौधरी का। बहरहाल एक और आवाज और एक और अंदाज छूकर मेरे मन को।

0: रेवा डायमंड्स फ्रॉम द हाउस ऑफ पीएनजी एंड सन्स प्रस्तुत कर रहे हैं खास मॉनसून ऑफर।
1: असली डायमंड की असली चमक, आधुनिक डिजाइन और मेकिंग चार्जेस पर 100% तक की छूट।
0: आज ही विजिट कीजिए पीएन गाडगिल शोरूम, रचना संसद, प्रभा देवी, सृष्टि प्राइम, गोखले रोड, ठाणे, फड़के रोड, डोंबिवली और बदलापुर।
1: रेवा नेचुरल डायमंड ज्वेलरी, शाइन नेचुरली।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

यहाँ बात जब मन की हो रही है तो एक जो प्रार्थना है वो अनायास ही मानो दस्तक देती है, वो है फिल्म गुड्डी। जी हाँ, गुड्डी की जो प्रार्थना है हमको मन की शक्ति देना, ना जाने कितनी गहरी बात है ना इसमें, क्योंकि हम जीतना तो सब कुछ चाहते हैं लेकिन अपने मन को ही हम जीत नहीं पाते, और जिसने मन को जीत लिया मानो उसने सब कुछ जीत लिया। और यही गहरी बात बताता हुआ ये गीत।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक कैफे। आज मैं हूं आपके साथ आरजे अनीता, और धीरे धीरे परते खोल रहे हैं मन की। लेकिन क्या ये वाकई संभव है कि कोई मन को समझ पाया हो? और हमारे जो एक श्रोता हैं राजेंद्र परमार जी, वो कह रहे हैं कि ये गीत अगर नहीं सुनाए तो शायद मन शब्द को लेकर जो गीत रचे गए हैं तो उसके साथ न्याय नहीं होगा। जी हाँ, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ आपकी बात से। और ये जिक्र कर रहे हैं काजल फिल्म का, जो ये गीत है तुरा मन दर्पण कहलाए। तो लीजिए राजेंद्र जी, आपने मानो मेरे मन की बात पढ़ ली। तो चलिए सुनते हैं फिल्म काजल का ये गीत।

जिया, इस गीत में कितनी गहरी बात थी ना कि आप जग से भाग सकते हैं लेकिन अपने मन से नहीं भाग सकते। और कहने को तो ये बहुत आसान लगता है लेकिन मन से कोई भाग के कुछ हासिल नहीं कर पाता और मन को जीतना भी उतना ही कठिन है। बहरहाल मन की आंखों की भी बात हो रही है इस गीत में, गौर करिएगा। आगे जाकर आपको एक पंक्ति सुनाई देगी, मुखड़े में नहीं है लेकिन अंतरे में मन की आंखों की बात है, तो जरूर गौर करिएगा।

जी हाँ, इस गीत में जिक्र हो रहा था मन की आंखों से काम लेने का। जैसे कि मैंने कहा था, मुखड़े में तो नहीं है मन का जिक्र, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे गीत में ही इसका जिक्र था। और आगे बढ़ते हैं और बावरे मन की बात करते हैं, क्योंकि मन तो बावरा होता ही है। और शायद आपने पढ़ा भी हो, हाल ही के शोध में ये पाया गया है कि मन दिल, मन यानी हमारा मस्तिष्क, दिल और शरीर यानी इन दोनों, इन तीनों का जो स्वास्थ्य है, एक दूसरे के साथ मानो गुथा हुआ है, एक तरह से जुड़ा हुआ है और ये अलग नहीं है। तो अगर आपका मन ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो आपका दिल, आपका जो तन है, वो भी शायद स्वस्थ नहीं रह सकता।

कार्यक्रम म्यूजिक कैफे और आप है मेरे यानी आरजानिता के साथ। मुझे खेद है कि हमारा जो न्यूज ऑन एआईआर ऐप वो ठीक से नहीं चल पा रहा है। हमारे इंजीनियर कोशिश कर रहे हैं उसे ठीक करने की, तो क्षमा करिएगा। और मैं समझ रही हूं कि हमारे कई सारे श्रोता जो इसी ऐप के द्वारा हमारे साथ जुड़ते हैं वो आज जुड़ नहीं पा रहे हैं। हालांकि उन्होंने व्हाट्सएप पर अपने पसंदीदा गीतों की फहरिस्त जरूर भेजी है और मैं कोशिश करूंगी इन्हें शामिल करने की। और मैंने आपसे पूछा था कि कौन से ऐसे गीतकार हैं जो मन के चितेरे हैं। सबसे बड़े चितेरे अगर मैं कहूं तो शायद योगेश, क्योंकि आप उठाकर देख लीजिए उनके कई सारे गीतों में मन शब्द का प्रयोग आपको अवश्य दिखेगा। और मेरे ख्याल से शायद उन्होंने ही इस शब्द का प्रयोग सबसे अधिक किया होगा गीतों में। मैं गलत भी हो सकती हूं, लेकिन यह गौर करने वाली बात जरूर है कि शायद ये जो शब्द था वो उनका बड़ा ही प्रिय शब्द था। बहरहाल एक और गीत उन्हीं के कलम से उतरा हुआ, ये सुदास की आवाज, जाने मन जाने मन।

अहोबिया जी ने ये रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से फरमाइश कर रहे हैं और ये बखूबी जानते हैं कि शायद ये सुन नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी और ये शायद उस वक्त जब चल रहा था ऐप तब उन्होंने फरमाइश भेजी थी, लेकिन गाना बड़ा खूबसूरत, फिल्म मल्हार का, रोशन का संगीत और एक बड़े ही मीठे एहसास को लिए हुए ये गीत नए नए प्यार पर मानो भरोसा जताता हुआ। तो लीजिए सुनिए इनकी पसंद का ये गीत।

जी हाँ, ये प्यार की दुनिया में पहला कदम रखता हुआ गीत, और किस खूबसूरती से कहा गया है ना, चांद घटता हो घटे अपनी मोहब्बत न हो कम। बहरहाल चलते हैं प्यार के एक और एहसास और एक और अंदाज की ओर। फिरोज सिगनपुरिया जी फरमाइश कर रहे हैं, गुलमोहर अगर तुम्हारा नाम होता, फिल्म देवता का ये गीत, ये भी बड़ा प्यारा युगल गीत। तो लीजिए फिरोज सिगनपुरिया जी, आपके और आपके दोस्तों के लिए ये गीत।

जी हाँ, अगली जो पसंद है वो है प्रकाश शिंदे जी की, जो ऐप पर नहीं सुन पा रहे हैं तो इसीलिए उन्होंने अब रेडियो पर शामिल कर लिया है खुद को इस प्रोग्राम में। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रकाश जी। और प्रकाश जी मानो फिल्म इतिहासकार भी है, क्योंकि वो फिल्म इतिहास का गीत सुनना चाह रहे हैं, और इतिहासकार इसलिए भी क्योंकि वो खबर रखते हैं कि कौन सी फिल्म किस दिन को रिलीज हुई। और उनका कहना है फिल्म इतिहास 29 साल पहले आज ही के दिन रिलीज हुई थी, और वो इसी फिल्म का एक गीत सुनना चाह रहे हैं। तो लीजिए प्रकाश जी, आपकी पसंद का ये गीत दिल की कलम से।

अगली जो पसंद है वो है अशोक पाटिल जी की, जो वरली मुंबई से हमें सुन रहे हैं और वो सुनना चाहते हैं एक कहानी गुल और बुलबुल की। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, फिल्म जब जब फूल खिले का ये प्यारा सा दो गाना इसलिए क्योंकि नंदा की भी आवाज आपको इसमें सुनाई देती है। तो चलिए सुनते हैं अशोक जी आपकी पसंद का ये गीत। और ये भी कह दूं कि 1:30 बजे होंगे समाचार और फिर 1:40 पर फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगी बाकी के जितने भी फरमाइशी गीत हैं उन्हें लेकर। तो तब तक के लिए सुनिए इस गीत को और मुझे केवल 10 मिनट के लिए आज्ञा दीजिए।

स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। कार्यक्रम है हिट एंड हॉट, जहां आप सुनते हैं आप ही की पसंद के गीत। तो अगली जो पसंद है वो है शोभा जी की, जो कि खार मुंबई से अपनी फरमाइश भेज रही हैं। वैसे तो शाम की बात है इस गीत में, लेकिन तन्हाइयों का भी जिक्र है। खैर, हम आपके साथ हैं तो आप तन्हा कैसे हो सकते हैं। फिल्म आह का ये गीत, ये शाम की तन्हाइयां। तो लीजिए शोभा जी, आपकी पसंद का ये गीत हम भी आपके साथ सुनते हैं।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिट एंड हॉट। मैं हूं आज आपके साथ आरजे अनीता। हम आप ही के फरमाइशी गीतों को शामिल करते हैं इस कार्यक्रम में। बहरहाल एक तड़कता फड़कता सा गीत फिल्म पद्मावत से फरमाइश करने वाली हैं नंदिनी विले पार्ले से। तो लीजिए नंदिनी जी आपकी पसंद का ये गीत जो सबको थिरकने पे शायद मजबूर ही कर दे।

जी अब अगली जो पेशकश है वो है फिल्म विरासत से, जिसे सुनना चाह रही हैं अरुणा जी खार पश्चिम मुंबई से ही। और यहाँ पर बाराती कुछ अलग ही हैं, क्योंकि तारे हैं बाराती। तो चलिए सुनते हैं अरुणा जी आपकी पसंद का ये गीत।

आज चूंकि ऐप काम नहीं कर रहा है तो हमारे कई सारे श्रोता जो हमारे साथ जुड़ते हैं ऐप के माध्यम से, तो वो आज जुड़ नहीं पाए। हालांकि उन्होंने अपने संदेश जरूर भेजे थे और मैं सिर्फ नाम पढ़े देती हूं उनके। अजय साखरे जी इंदौर से, विजय महुबिया जी जो मध्य प्रदेश से हैं, अंकित जी, उसके बाद विजेंद्र घाटोल जी अकोला से, दिग्दर्शन और कविता मेरठ से, प्रभो चिंचोलकर जी अकोला से, और हमारे कई सारे और सदस्य जैसे पंकज मोहर जी अमरावती से। तो इन्होंने शिरकत तो की है और गुजारिश की है कि उनके नाम कम से कम पढ़ दिए जाए, हालांकि वो गीत नहीं सुन पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने सुन लिए होंगे, और या आपके चाहने वाले, आपके जितने भी दोस्त हैं, उन्होंने आपको जरूर सुना होगा आपके नाम। साथ ही हितेंद्र दास जी जो असम से भी हमारे साथ जुड़ते हैं, प्रदीप अनंत कृष्णन जी जो ऐप पे हमारे साथ जुड़ते हैं, महेश बोहरा जी अजमेर राजस्थान से। तो इन सब से मैं क्षमा मांगूंगी कि ये ऐप में गड़बड़ी के कारण नहीं सुन पाए, लेकिन छोड़े जाती हूँ इस गीत के साथ जो कि है फिल्म फकीरा का गीत, और इन सभी की, कईयों की पसंद का ये गीत। उम्मीद करूंगी कि आपका जो वीकेंड हो वो सुखमय हो, और अपने और अपनों का ख्याल रखिए। दोबारा जरूर फिर कभी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। साथ ही ये भी बता दूं कि 2 बजे होंगे समाचार, क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी।

0: adding that efforts to eliminate Hezbollah had failed and Israel would eventually withdraw from Lebanese territory. In cricket, Afghanistan were 29 for 3 in 8 overs against India in the third and final ODI at the M. H. Chidambaram Stadium in Chennai when reports last came in. Earlier, visitors won the toss and elected to bat first. Hosts have already secured the series with a 2-0 lead and will be aiming to complete a clean sweep of the three-match series. Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium today. Matheus Ganhag starred for the five-time world champion, scoring twice in the first half. Vinicius Jr. added a third goal before the break to give Brazil a commanding lead. The score remained unchanged in the second half as Brazil controlled the match and secured all 3 points. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi joins President Draupadi Murmu in Odisha to inaugurate projects worth over 47,600 crore rupees. Government prohibits manufacture, sale and distribution of 16 fixed dose combinations in public interest. NTA conducts nationwide mock drill ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. IMD issues red alert for extremely heavy rainfall at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. In cricket, third and final ODI between India and Afghanistan underway in Chennai. And in FIFA World Cup, Brazil registered their first win, defeating Haiti 3-0. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उड़ीसा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
2: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहाँ प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
1: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं

0: उनका संबोधन।
1: मदन सिंह देव जी, प्रवति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश सिंह खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण माझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाइयों और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
2: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने

0: कामाख्या का कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ

0: अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 2,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते, और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2,500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाईब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत

और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अशिक्त होते मनात माझ्या माझी सजणी ग माझी सजणी माझी राणी।

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: लाइफ की बीट्स होती नहीं फिक्स, लव यू जिंदगी 5 to 6 एवरी इवनिंग विद चाय बिस्किट्स, ट्यून इन रेनबो, रिलैक्स एंड चिल।
2: एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। और आप सभी लोगों के साथ मैं लेकर आया हूं ये प्रोग्राम लव यू जिंदगी। 5:03 और 10:11 स्टूडियो की घड़ी से घड़ी मिला लीजिए और ताल से ताल मैं रहने वाला हूं आप लोगों के साथ रात 8 बजे तक। ऑफकोर्स इसके बाद होगा अंदाजे बयां और फिर हम तुम, जिसमें आप लोगों की रिक्वेस्ट होगी और अपडेट्स होते रहेंगे बीच में, न्यूज अपडेट्स और बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ। तो ज्यादा वक्त न जाया करते हुए इस वीकेंड वाइब को स्टार्ट करते हैं कुछ बेहतरीन गानों के साथ। उम्मीद है कि आप लोग बने रहेंगे मेरे साथ। 8657661071 पर व्हाट्सएप करना शुरू कर दीजिए। स्टे ट्यून्ड, दिल से दिल तक। जी हाँ, मैं हूं वसीम।

एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। 5:13:56 और उम्मीद है कि ये जो गाने आप लोगों ने सुने अब तक वो आप लोगों को बहुत पसंद आए और हमें भी बहुत अच्छे लगते हैं सुनने के लिए, और ख़ासकर ही शाम का वक्त जब इतना सुकून भरा हो और उसमें आप लोग ऐसे गाने सुने। क्या अल्फाज हैं, क्या बोल। प्रकाश थैंक यू, विनती ठाकुर आपका भी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप लोग बने हुए हैं लव यू जिंदगी पर। और चिन्मय श्रीपदा ने गाया था और शेखर रवि जानी के साथ, और शेखर के कई सारे गाने, विशाल शेखर जो डुओ है, कंपोजर्स भी हैं और ये दोनों सिंगर्स भी हैं आउटस्टैंडिंग। तो शेखर के कुछ गाने बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग।

0: हो यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
1: लाइफ की बीट्स होती नहीं फिक्स, लव यू जिंदगी 5 to 6 एवरी इवनिंग विद चाय बिस्किट्स, ट्यून इन रेनबो, रिलैक्स एंड चिल।
2: यही वो गाना जिसका मैं जिक्र कर रहा था। प्रकाश, अच्छी कोशिश की तुमने एक कुड़ी की, लेकिन दिस वॉज द सॉन्ग फ्रॉम गुडू रंगीला। स्टे ट्यून्ड।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।

एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। 5:33 और 21:22 हो चुके हैं। आप लोग बने हुए हैं बिल्कुल न्यूज़ ऑन एयर ऐप मोबाइल ऐप और 107.1 MHz पर सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। प्रोग्राम लव यू जिंदगी आधे घंटे से ऊपर हो गया इस प्रोग्राम को, और आप सभी लोग जितने भी जुड़े हैं हमारे साथ, रजनीकांत, विजेंद्र, प्रकाश, मीना जी, राजेंद्र, विनाली, थैंक यू सो मच आप सभी का। जितने भी लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं और कॉल कर रहे हैं उसके लिए भी प्रकाश शुक्रिया तुम्हारा। और कई सारी बातें हैं, लेकिन उनमें से एक ये जो सुर म्यूज़िक थेरेपी के बारे में कभी आप लोगों ने अगर सुना हो, भारतीय शास्त्रीय संगीत और ख़ास साउंड फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल तनाव यानी एनजाइटी, तनाव, ब्लड प्रेशर, इसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंडर कंट्रोल रखता था, जैसे कई सारी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये है, ये बात तो है कि म्यूज़िक इज़ ऑलवेज अ थेरेपी। जब आप उसे सुनते हैं कई सारे गाने जो मूड के हिसाब से, तो आपका मिजाज ज़रूर बदल जाता है। इसके बारे में ना कहीं आप लोग अगर ऑनलाइन जाएंगे तो आप लोगों को नौशाद साहब की एक क्लिप ज़रूर ढूंढना, जो लेजेंडरी म्यूज़िक कंपोजर थे स्वर्गीय नौशाद साहब, उनकी एक बात जो इस बात को लेकर थी ना, वो ज़रूर आप लोगों तक जब आप देखेंगे तो आपको उसका अंदाज़ा होगा कि आखिर किस तरह से वो डिटेल में इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से ये बात शेयर की जाए। आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, 8657661071 आप बता दीजिए मुझे कि आखिर क्या आपके लिए मायने रखता है म्यूज़िक। और मुझे ये भी आप लोगों से पूछना है कि क्या म्यूज़िक के बारे में आप लोगों ने सुना है, आखिर क्या है ये टर्म, कहीं मैंने दो बातों को मर्ज से नहीं कर दिया, दो लफ्ज़ों को। चलिए बताइएगा मुझे और मेरे साथ बने रहिए। अभी कुछ गाने और उसके बाद ऑफ कोर्स अपडेट्स, फिर ये गानों का सिलसिला जारी।

0: विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 च्या कलम 12 नुसार पात्र नागरिक निशुल्क कायदेशीर मदत न्यायबंधू या मोबाईल ऍप वरून किंवा www.provono-eoj.in या वेबसाइट वरून मिळवू शकता.
1: लाइफ की बीट्स होती नहीं फिक्स, लव यू जिंदगी 5 to 6 एवरी इवनिंग विद चाय बिस्किट्स. ट्यून इन रेनबो, रिलैक्स एंड चिल.

0: लाइफ की बीट्स होती नहीं फिक्स, लव यू जिंदगी 5 to 6 एवरी इवनिंग विद चाय बिस्किट्स, ट्यून इन रेनबो, रिलैक्स एंड चिल।
1: 5:53 हो चुके हैं और आप लोगों के मैसेजेस मुझे मिलते चले जा रहे हैं। थैंक यू सो मच राहुल, आपका मैसेज भी आ, विजेंद्र शुक्रिया आपका। और मीना जी आपने कहा जब वी मेट भी फिल्म आप देख रहे हैं और साथ ही साथ अब सुन भी रहे हैं, किस तरह से ये आपको पता। वैसे एक गाना है जिसे आपने कई बार सुना होगा, ठीक है, लेकिन क्या इस गाने का बोल जो है या उसके बोल के पीछे की कहानी पता है आपको? कतिया यानी पंजाबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कि चरखे पर सूत काटना। और एक दौर था जब पंजाब के गाँव में महिलाएं अपने पति या प्रेमी का इंतजार करते हुए चरखा चलाती थी और सूत काटती थी, और सूत काटने की उम्र प्रक्रिया या उस प्रक्रिया को कतिया कहा जाता था। ये गाना कौन सी फिल्म पे आप लोग मुझे बता सकते हैं 8657661071 पर। फिलहाल मैं ये बात मुकम्मल कर लूं, लेकिन इस गाने में चरखा चलाने का मतलब सिर्फ धागा बनाना नहीं है, बल्कि सूफी शायरी और पंजाब के लोक साहित्य के चरखे को इंसान के शरीर और आत्मा का प्रतीक बताया जा रहा है। देखिए कितना कुछ एक पर्टिकुलर गाने के पीछे होता है। हम सुनते हैं, पसंद आया नहीं आया, लेकिन उसके पीछे की कुछ कुछ गानों की जो मेहनत है वो अपने आप में कमाल है, बेमिसाल है। चलिए ज्यादा वक्त न जाया करते हुए सुन लेते हैं और भी कुछ खूबसूरत गाने लव यू जिंदगी पर, दिल से दिल तक। बिल्कुल आप 6:05 पे न्यूज अपडेट सुनेंगे, फिर 6:15 मिलता हूँ आप लोगों से लेकर प्रोग्राम अंदाज़े बयां, दिल से दिल तक।

न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल और साथ ही साथ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2026 की हर खास खबर, हर बड़ी फिल्म और फिल्मकारों से विशेष बातचीत सुनिए 16 जून से 20 जून तक देर रात या हर रोज रात 10 बजे तक मिफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 की विशेष रेडियो रिपोर्ट। तो जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ 107.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ और महसूस कीजिए विश्व सिनेमा का उत्सव केवल आकाशवाणी मुंबई पर। और इसी के साथ आप और हम शुरू करते हैं प्रोग्राम अंदाज़े बयां कुछ सुकून भरे गानों के साथ। ऑफ कोर्स योगा दिवस है कल और म्यूज़िक भी, तो उसी को लेकर मैंने वो जो योजिक वर्ड यूज़ किया था ना, वहीं से वो इंस्पायर हुआ था। फिलहाल बने रहिए मेरे साथ इन खूबसूरत गानों के दरमियाँ।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है और 6:30, 51:52 अंदाज़े बयां आप सभी लोग मेरे साथ यहाँ पर बने हुए। फिरोज़, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा।

पंकज माहौर, हितेंद्र दास, महेश बोहरा, मीना जी प्रकाश, प्रणव शिंदे, रजनीकांत, विजेंद्र, आप सब लोग जितने भी सुन रहे हैं उन सभी का शुक्रिया इस प्रोग्राम में बने रहने के लिए। मुझे आप लोगों के मैसेजेस लगातार मिल रहे हैं, थैंक यू सो मच। वैसे चलिए, अब अंदाज़े बयां है तो उसका अंदाज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा कि एक शेर आपकी नज़र कर रहा हूँ कि घर में पहुँचूँगा तो सब गठरी टटोलेंगे मेरी। ये मेहनत कश लोगों के लिए है जो दिन भर मेहनत करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने इर्द गिर्द रहने वालों के, अपने चाहने वालों के लिए, लेकिन वो जो हालातों से गुजरते हैं उस पर नज़र किसी की नहीं जाती। उसके नज़रिए से ये शायर ने शेर लिखा है कि घर में पहुँचूँगा तो सब गठरी टटोलेंगे मेरी, आँख में चुभती हुई गर्द सफ़र देखेगा कौन, आँख में चुभती हुई गर्द सफ़र देखेगा कौन। कोई नहीं, बस आप ही अपने साथी हैं और आप ही अपने हम सफ़र। बस ज़िंदगी में ये बात अगर समझ आ जाए ना, तो उम्मीद जो होती है किसी से कि कोई आपसे इस तरह से पूछे, कोई लगाव हो, कोई आपसे इस तरह से बात करे कि आप इस आस में बैठे हो और वो आस पूरी ना हो, और वो आस पास ना हो, कोई ख़ास ना हो, तो वो कमी बड़ी खलती है। ये सारा दारोमदार उम्मीद पर है। ना उम्मीद ही कुफ्र है, लेकिन ऐसी उम्मीद होगा क्या फ़ायदा। क्या खूबसूरत शेर है, देखिए बात कहाँ से कहाँ चली गई। फ़िलहाल मैं आप लोगों को फिर से लेकर चलता हूँ कुछ खूबसूरत फिल्मी नगमों की तरफ, अंदाज़े में यहाँ पे दिल से दिल तक।

0: आदाब, गजल कव्वाली फोक और सूफी की महफिल सजेगी रेनबो के साथ। प्रोग्राम अंदाज़े बयां में शाम 6 से 7, तो ट्यून इन करें 107.1 एफएम रेनबो जनाब।
1: एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं 7:45 यानी 6:45 हो चुके हैं और 15-16 सेकंड्स हो चुके हैं। ये प्रोग्राम चल रहा है अंदाज़े बयां और पंकज थैंक यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता, तुम्हारा भी मैसेज हमें मिला है। और गुलजार साहब लिखते हैं लेकिन से, उसके पहले भी जो एक शिकवा था कि तुमने साहिल पहले भी छाया होता खामोश सा अफसाना पानी से लिखा, क्या बात है, क्या कमाल राइटिंग है गुलजार साहब, कमाल, क्या सोच है। उसके बाद वक्त के पांव देखता हूँ मैं, रोज़ ये छांव देखता हूँ मैं, मतलब धूप से छांव में तब्दील हो जाना और उस नज़ारे को मंजर को लफ्ज़ों में ले आना, लोगों तक पहुँचाना, गाने में उसे पिरो कर पेश करना और उसे हमें एहसास भी होना कि हाँ ये उस बात का मतलब है। अगर आपने उस नज़रिए से नहीं सुना तो शायद मैंने सोचा

जगह आप लोगों तक ये बात पहुंचा दी जाए। देखिए ये होता है कमाल। तो आप और हम बने हुए हैं इस अंदाजे बयां पे, जहाँ पे सिर्फ लफ्ज नहीं, अल्फाज नहीं, उनके पीछे छुपे ख्याल भी सामने नजर आते हैं। ये और बात है कि वो सुनने और समझने वालों को। फिलहाल कुछ और खूबसूरत गाने आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं इन्हें अंदाजे बयां पे, दिल से दिल तक।

0: 7.1 megahertz, musically yours.
1: आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट रूल करेगी रेनबो की प्लेलिस्ट एवरी इवनिंग 7 to 8 PM इन प्रोग्राम हम तुम और गाने तुम्हारे ओनली ऑन 107.1 FM रेनबो म्यूजिकली योर्स।
2: नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप और 107.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल, और मैं हूं वसीम आप लोगों के साथ यहां पर बिल्कुल लाइव। ये प्रोग्राम है हम तुम, और आप लोगों की रिक्वेस्ट आना शुरू हो चुकी है। हीरामणि वर्मा, आपके भी मैसेज, दिग्दर्शन, कविता, सुशील यादव, रेणु यादव, काजल कक्कर चेंबूर से, मेहर अरोरा, मीना जी, प्रकाश शिंदे, पंकज मोहर, सब प्रिफिरो सिगनपुरिया, हितेंद्र दास, ये सब लोग। हितेंद्र तो कह रहे मेरा नाम ही ले लेना, आप कोई भी गाना प्ले कर दो। वैसे ही मुझे फिरोज ने भी कहा है, और रफ़ी साहब कोई भी गाना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ये प्रोग्राम आप लोगों की रिक्वेस्ट के साथ, और रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गाना सुन लेते हैं आप और हम तुम पर, दिल से दिल तक।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट रूल करेगी रेनबो की प्लेलिस्ट एवरी इवनिंग 7 to 8 PM इन प्रोग्राम हम तुम और गाने तुम्हारे ओनली ऑन 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।
3: सात बजकर 31 मिनट हो गए हैं, बस कुछ देर और फिर ये प्रोग्राम हम तुम मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की जितनी भी रिक्वेस्ट प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, वो मैं ज़रूर करूँगा। विजेंद्र थैंक यू सो मच, महाराज कीर्तन, मीना जी, काजल कक्कर, प्रणव शिंदे, अजय साखरे, हीरामणि दिग्दर्शन, आप सब प्रकाश में वो रिक्वेस्ट ज़रूर प्ले कर रहा हूँ। उससे पहले एक ख्याल है कि दोस्त किताब रास्ता और सोच ये चारों जो जीवन में सही मिले तो ज़िंदगी निखर जाती है, वरना ज़िंदगी

बिखर जाती है। क्या आप इससे इतफाक रखते हैं? 8657661071 पर आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 च्या कलम 12 नुसार पात्र नागरिक निशुल्क कायदेशीर मदत न्यायबंधू या मोबाईल ऍप वरून किंवा www.provono-doj.in या वेबसाइट वरून मिळवू शकता।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

बिल्कुल कायदे से अब मेरा वक्त हुआ है यहाँ से जाने का, क्योंकि फली आ चुके हैं स्टूडियो में और वो रहने वाले हैं आप लोगों के साथ बिल्कुल एंटरटेन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। योगा डे म्यूजिक दे दोनों साथ में म्यूजिक, सो आई कैन से दैट आप लोग एंजॉय करिएगा और जरूर शामिल होना। सुकून बहुत ज्यादा जरूरी, पीस ऑफ माइंड एंड नॉट पीसेस ऑफ माइंड इज वॉट मैटर्स। स्टे ट्यून्ड मेरे साथ, अगले प्रोग्राम में मिलूंगा। टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एफएम रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारम्भ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। मध्य फिर से बंद किया और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भाव्य दायित्व ग्रहण करवा दिन
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री

0: मंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
2: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपये जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा।
2: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
1: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार

0: कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
1: लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
2: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं था चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
4: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
3: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुँचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से

0: एक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत हैं, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
0: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as voice of peace, dialogue and cooperation, as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. Iran closes Strait of Hormuz over ceasefire violation. And in cricket, India clean sweep 3-match series against Afghanistan 3-0, defeating the visitors by 9 wickets in third ODI at Chennai. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government, in the presence of Mr. Modi, the President said India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation under Prime Minister Modi's stewardship.
4: देशर प्रधानमंत्री।

0: as a vital cultural platform for the open exchange of independent perspectives. We have a special chat with Sri Prabhat, the additional secretary of the Ministry of Information and Broadcasting, breaking down the vision and policy, pushing our storytelling onto the international stage. Let's dive straight into it.
1: जहाँ तक फिल्म फेस्टिवल्स की बात है, वो हर फेस्टिवल का अपना एक इम्पोर्टेंस है, बट ये MIFF जो है, ये इसमें खास बात है कि शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज हैं, ये बिल्कुल ही अलग तरह का एक फिल्म मेकिंग है, अलग तरह का आर्ट फॉर्म है। हर आर्ट फॉर्म को बढ़ावा पहले भी दिया जाता था, जो भी गवर्नमेंट रहती थी अभी भी देते हैं, अभी और भी ज़्यादा ज़ोर शोर से दे रहे हैं हम लोग। इफ़ी और जो फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, जो फेस्टिवल सर्किट की हैं, उसमें नॉर्मल हॉलीवुड मतलब नॉर्मल फीचर फिल्म्स होते हैं, जबकि MIFF में छोटे प्रोड्यूसर्स, छोटे डायरेक्टर बहुत ही अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स को लेके बनाते हैं। जैसे कोई 5 मिनट का बना रहा है, लेकिन इतना स्ट्रांग मैसेज है और इतना इमोशनल है वो, देखने के बाद यू कांट स्टॉप रिएक्टिंग। आई मीन अंदर अंदर आपके एक मंथन शुरू हो जाता है कि ये क्या दिखा गया थोड़ी सी देर में, 5 मिनट में, 7 मिनट में कोई कुछ दिखा जा रहा है, अलग अलग पहलू। एक जैसे कि देखा द काउ, उसमें एक गाय जो है वो, जो उसके फादर के पास थी, लड़की के फादर नहीं रहा, वो कैसे उसके जीवन को बदल देती है। सो वेरी डिफरेंट थीम्स, बहुत ही वेरिड थीम्स और बहुत ही स्ट्रांग और इमोशनल रहे सारे जो हमने देखा आज, और इनको बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। स्टोरी टेलिंग जो है वो, जो आर्ट फॉर्म है उसको बनाए रखना, ये एक साथ इतने लोगों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं कि इनका मिनिस्ट्री हमेशा से इनकरेज करते रही है, बढ़ावा देते रही है, देते रहेगी। हर तरह के आर्ट फॉर्म को बढ़ावा देना चाहिए, और हम फीचर फिल्म को भी देते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज को भी देते हैं।
0: Kicking off with the highly curated Prism package, which always brings out the most intimate human stories, opening the slot was a beautifully poignant 5-minute Hindi short called Meri Sakhi. It takes a special kind of storytelling precision to leave a lasting impact on an audience in just 5 minutes, and director Mihir Upadhyay did exactly that. I got a chance to catch up with Mihir right outside the preview theater to talk about the inspiration behind this short and what it feels like to have his vision premiering on a massive platform like MIFF.
2: MIFF is very special because it's, I think, one of the very few extremely well curated film festivals in India, and this time we are part of Prism package, which allows for innovative films to be showcased, to have a chance to come in front of the audience, which do not fit into conventional categories, whether it's feature, long, short. So we are very glad that we found something like this. My film Meri Sakhi, it's our homage to the unusual friendship of women and her sari, you know. जितनी एक डाइवर्सिटी, एक रेंज एक औरत में होती है, उतना रेंज का कोई भी अटायर नहीं है सिवाय साड़ी के। एक औरत जिस तरीके से मल्टीपल रोल्स प्ले कर सकती है सीमलेसली, उसी तरीके से साड़ी एक ऐसा आभूषण है, एक वस्त्र है जो उसका साथ निभाता है।
0: The Prism package kept the audience completely glued to their seats with two back-to-back powerhouses that showcased the absolute best of regional filmmaking. First came The Way She Weaves, directed by Torsha Banerjee. The film was in Nepali, English and Lepcha. While the directing is spectacular, the real unsung hero of this film is its editing, seamless pacing and how it weaves three languages together. We have a very special treat for our film buff listeners because I managed to chat with the editor of The Way She Weaves. Here is Rohit.
3: बहुत ही अच्छा लगा कि ऑडियंस बहुत इंटरेक्टिव भी था, और अलग से जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं मतलब एडिटिंग के बारे में या साउंड डिजाइनिंग के बारे में, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये बहुत अच्छा लगा। ये फिल्म, ये जनरेशन वाइज जनरेशन जो मेमोरी को पकड़ के और इंडिजिनियस काम को पकड़ के वीविंग का ये चले आ रहे, ये जो रिचुअल चले आ रही है, हम लोग रिचुअल बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि उन लोगों के लिए रिचुअल ही है, कस्टम्स है उन लोगों के, जो भी अलग से रिचुअल होता है, शादी बोलिए या दूसरा कोई भी, वहाँ पर भी ये वीविंग काम में लगते हैं उन लोगों का। और ये आज का जो जनरेशन है वहाँ पर, मेरा एज का जो जनरेशन है, वो लोग ये वीविंग को लेकर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी सोच रहे हैं, तो ये बढ़िया चीज़ है। और इसको लेकर ही पूरा फिल्म है कि कैसे मेमोरी वाइज, कैसे कल्चर वाइज और कैसे महिला के हाथ से ग्रैंड मदर टू मदर, मदर टू देयर किड्स, ये पूरा चले आ रहा है, इसके बारे में ये फिल्म है द वे शी वीव्स, जैसे तरतीब देती है वो।
0: नाउ शिफ्टिंग फोकस टू the much talked about artificial intelligence. Over at JB Hall, the festival took a massive futuristic leap

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपये जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वेलकम बैक जी, प्रोग्राम शुरू हो गया है आपका और हमारा अपना फेवरेट शो जिसे कहते हैं रंगे महफिल। और आज की महफिल सजी है मेरे साथ। मैं कौन? मैं आपका अपना खास, आपका अपना विकास, आपका अपना विक्स। प्रोग्राम रंगे महफिल में तो शुरुआत बहुत सी बातों की करनी थी और कहां से शुरू करूं समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जज्बात इस कदर मेरे दिल में, जज्बात इस कदर मेरे दिल में कि बोलूं तो सोचूं कि पहले कौन से लफ्ज को आपके लिए बयां करूं। तो इतने सारे जो ख्वाहिशें हमारे दिल में होती हैं, हम सभी की बात है, कभी ना कभी ऐसा मुकाम आता है जब बोलने की बात आती है, यानी दिल में जहन में तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन जब बोलने की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारे शब्द इधर उधर हो जाते हैं। सरकार, और बात जब दिल की हो तो मामला और भी पेचीदा हो जाता है। तो सबसे पहले स्वागत है मेरे तमाम दोस्तों का जो आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल, और शिरकत कर लिए हमारे इस प्रोग्राम में प्रेमचंद प्रेमी जी जेतरा धामपुर बिजनौर से। लिखते हैं, आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्रिया जी। लिए दर्द बेशुमार तड़प जीते रहे हम, शिद्दत में अश्क आंख के पीते रहे हम, समंदर तो था करीब ये और बात है कि प्याला ए तल सुराख सा रीते रहे हम। यादों में जिनकी दफन मेरा आज हो गया, उन्हीं के लिए कल की तरह बीत रहे हम। चांदी की तराजू है मगर जानती है दोस्त कि हर बार जर के ढेर से नीते रहे हम। तेरे उजालों ने दिए जख्म जो बेगुनाहे दिल, रातों में बैठे तन्हा उन्हें सीते रहे हम। लिए दर्द बेशुमार तड़प जीते रहे हम। वाह, क्या बात है। और आप ही की बात को बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि कोशिश तो बहुत की थी राजे दिल बयां ना हो, कोशिश तो बहुत की थी राजे दिल बयां ना हो, पर मुमकिन कहां था कि आग लगे और धुआं भी ना हो।

कब से तेरा इंतजार मैं अपना दिल लगाए बैठे हैं, तेरे एक दीदार के लिए आंखें बिछाए बैठे हैं। तेरी एक नजर व करम हमारी रूह पर पड़ जाए, इसी आस में हम लाखों तमन्ना दिल में जगाए बैठे हैं। हर फूल गुलाब नहीं होता, अक्सर पूरा हर ख्वाब नहीं होता। जिंदगी भी कर देती है कभी कभी अजीब सवाल, खैर जाने दो, हर सवाल का जवाब नहीं होता। ये खूबसूरत सी लाइन दिल की भेजी है अंशु शर्मा, हस्तिनापुर मेरठ यूपी से। वो झील, वो नदियां, वो हवाएं, एक तरफ उसकी आंखें, उसकी जुल्फें, उसका चेहरा एक तरफ। वो मेरे ख्वाबों में आए और मुझे सताए, नींद की खुमारी एक तरफ, उसका सताना एक तरफ। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान साहब, क्या बात है। कहते हैं हम तो समझे थे कि जख्म है भर जाएगा, हम तो समझे थे कि जख्म है भर जाएगा, क्या खबर थी कि रोग दिल में उतर जाएगा। ठीक लिखा था मेरे हाथ की लकीरों में, तू अगर प्यार करेगा तो बिखर जाएगा। आलम यह है कि तेरी याद आती है, और जब भी आती है मुझे और भी तन्हा कर जाती है।

0: वाणी करता है सलाम, इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: सतरंगे महफिल में गजलों का ये कारवा आगे भी जारी रहेगा। बस लौटता हूँ छोटे से अंतराल के बाद।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाश

छोटे से अंतराल के बाद सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम रंगे महफिल में। तेरी यादों को दिल से भुलाना भुलाया नहीं आता, किसी सूरत भी तुझको भुलाया नहीं आता। जुदाई रोज आकर इस कदर मुझको सताती है, मगर ये दर्द दुनिया को सुनाया नहीं आता। तेरे बिन चांद तारे रात सब वीरान लगते हैं, मुझे अब कोई मंजर भी सुहाया नहीं आता। बहुत रोया हूं तन्हाई में चुपके चुपके में, मगर लोगों को चेहरा ये रुलाया नहीं आता। मोहब्बत में वफाओं का यही अंजाम देखा है, किसी अपने को भी रिश्ता निभाया नहीं आता। क्या बात है मोहम्मद सरफराज आलम जी, जो कि हर दर्शना बाजार से बहुत ही शानदार लाइंस दिल की हमें भेजते हुए। फारूक अली खान साहब लिखते हैं, कभी एक जान होने का दावा करने वाले आज अनजान बनकर महफिल से गुजर गए। तो सरकार कौन गुजर गया बता सकते हैं आप? अगर बता पाए तो दिल का जो दर्द है वो हल्का जरूर हो जाएगा, ये कह सकता हूं मैं। कहते हैं कि सोया ही नहीं कि जिंदगी में, सोचा ही नहीं कि जिंदगी में कभी ऐसे भी फसाने होंगे। दिल की बात बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो सोचा ही नहीं कि जिंदगी में कभी ऐसे भी फसाने होंगे। रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम रंगे महफिल में। तेरी शान में कलम उठाई और तेरा नाम लिखा, खुद को जमी और तुझे आसमान लिखा। खुदा ने दिल है मुझे एक प्यारी सी जिंदगी, और इस जिंदगी में मैंने तुझे अपना जहां लिखा। हर चाहत का मुकम्मल होना जरूरी नहीं, कुछ हसरतें दूर रहकर भी खूबसूरत लगती है। नजरें तलाशती हैं जिसको वो प्यारा सा ख्वाब हो तुम, मिलते हैं लोग बहुत सारे ना मिलकर भी लाजवाब हो तुम। क्या बात है, ये लाजवाब लाइन लिखी है, हमें भेजी है अंशी शर्मा हसनपुर मेरठ यूपी से। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। उम्र भर किसी की याद में इतना लड़े हैं हम कि तिनकों की तरह राह में बिखरे पड़े हैं हम, और तन्हाई की आलम की ये इंतहा है मेरे दोस्त के अपनी महफिलों में अकेले खड़े हैं हम, अकेले खड़े हैं हम। प्रेमचंद प्रेमी जी धामपुर से

हेलो हेलो जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। बहुत दिनों बाद आए आप। कब आएंगे आप? अफसर हानम धामपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश से। दोस्त, अभी अगले शो का तो नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर है आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से मुलाकात ज़रूर होगी आपसे। शुक्रिया हमारी महफिल में आने के लिए।

जी सरकार, दिल की बात है और दिल के जज्बात हैं, शब्द अपने अपने हैं लेकिन जज्बात कहीं ना कहीं एक ही होते हैं। अक्सर मैं कहता हूँ कुछ पल अभी है हमारे पास, उसे भी यादगार बनाते हैं।

और दोस्तों वक्त हो गया है कि इस प्रोग्राम से मैं अलविदा करूं आप सभी को, और मिलेंगे आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से फिर किसी मंच पर। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। बारहवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
1: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आज INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। नीट UG 2026 पुनः परीक्षा आज संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि 3 भारतीय ध्वज लगे टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर चुके हैं और भारत आ रहे हैं। इनमें 86,00,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। इन टैंकरों में 94 भारतीय चालक दल के सदस्य भी सवार हैं। ये तेल टैंकर देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड हैं। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने घोषणा की है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। ये फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी रेनबो पर आइए ले चलते हैं आपको अब रात के सफर पर, संगीतमय सफर में। अब पहला कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर जो आए हैं उसका नाम है जीरो आर शो। तो आइए लेते हैं आनंद जीरो आर शो का और सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीत।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
3: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
2: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
4: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
5: ठीक है।
4: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
3: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
6: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
3: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
3: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
3: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
3: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कोयल सी तेरी बोली,
3: हाय
2: तेरी तिरछी नजर में है जादू।

0: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
0: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
1: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आज INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS आग्रह का अनावरण करेंगे। इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री वैष्णव राज्य में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल संपर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे, जहां वे बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। नीट UG 2026 पुनः परीक्षा आज संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि 3 भारतीय ध्वजवाहक टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मूज जल डमरू मध्य को पार कर चुके हैं और भारत आ रहे हैं। इन टैंकर में 94 भारतीय चालक दल के सदस्य भी सवार हैं। ये तेल टैंकर देश वैभव, देश विभोर और सन्मार हेराल्ड हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
2: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
0: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
0: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आज INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का अनावरण करेंगे। इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
1: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़

0: हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री वैष्णव राज्य में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 2,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा आज संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। फीफा विश्व कप में ग्रुप एफ में नीदरलैंड और स्वीडन के बीच मैच अमेरिका के ह्यूस्टन में एनआरजी स्टेडियम में चल रहा है। नीदरलैंड स्वीडन के खिलाफ 4-1 से आगे है। इससे पहले ब्राजील ने फिलाडेल्फिया स्टेडियम में हैती पर 3-0 की आसान जीत के साथ फीफा विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील के लिए मैथियस कुन्हा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले हाफ में 2 गोल किए, जबकि विनीसियस जूनियर ने तीसरा गोल दागा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी रेनबो पर आइए अब आपको ले चलते हैं कुछ ऐसे गीतों की दुनिया में जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम है भुलाए ना बने।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में आज INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
1: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। रेल मंत्री

श्री वैष्णव आज राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री वैष्णव राज्य में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल संपर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा आज संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। पद्मश्री पी नारायण कुरूप के निधन से मलयालम साहित्य ने अपनी एक विशिष्ट आवाज खो दी है। वे कवि, आलोचक, व्यंग्यकार और विद्वान थे जिन्होंने शास्त्रीय परंपराओं को समकालीन विचारों के साथ मिलाया। उनका निधन कल रात केरलम की राजधानी त्रिवेंद्रम में हुआ। फीफा विश्व कप के ग्रुप ई में जर्मनी और आइवरी कोस्ट के बीच मैच कनाडा के टोरंटो स्थित बीएमओ फील्ड में चल रहा है। अब से कुछ देर पहले ग्रुप एफ के मैच में नीदरलैंड्स ने स्वीडन को 5-1 से करारी शिकस्त दी। ये मैच अमेरिका के ह्यूस्टन में एनआरजी स्टेडियम में खेला गया। इससे पहले ब्राजील ने फिलाडेल्फिया स्टेडियम में हैती को 3-0 से हराकर फीफा विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेम भोजन के साथ। समय उजला है हमारे अगले प्रोग्राम में टाइट मेलोडीज का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से।

0: बच्चों की आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा है इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी

0: एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।

0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। बारहवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
1: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में आज INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इन पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। नीट UG 2026 पुनः परीक्षा आज संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री वैष्णव राज्य में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल संपर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि 3 भारतीय ध्वज वाहक टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मूज जल डमरू मध्य को पार कर चुके हैं और भारत आ रहे हैं। इनमें 86 लाख

मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। इन टैंकर में 94 भारतीय चालक दल के सदस्य भी सवार हैं। ये तेल टैंकर देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड हैं। फीफा विश्व कप के ग्रुप ई में जर्मनी और आइवरी कोस्ट के बीच मैच कनाडा के टोरंटो स्थित बीएमओ फील्ड में चल रहा है। अब से कुछ देर पहले ग्रुप एफ के मैच में नीदरलैंड्स ने स्वीडन को 5-1 से करारी शिकस्त दी। ये मैच अमेरिका के ह्यूस्टन में एनआरजी स्टेडियम में खेला गया। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ 102.6 MHz पर। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम सारे गामा का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
2: मन की बात

जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: आकाशवाणी एफ एम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: वंदे मातरम।
2: वंदे